उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे नु इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड़ा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा नु एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जातां पातां इंसान दियां बनाईयां हन सानू सारियां नु बनाण वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपा भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ये शब्द गा के रस